इंदिरा मोबाइल सेंटर धादिंग बेसी में ऑफर है ऑफर। इंदिरा मोबाइल सेंटर यही जेठ 7 गते को दिन नया डेकोरेशन का साथ ग्रैंड ओपनिंग हुँदै छ। यस ग्रैंड ओपनिंग को दिन में संपूर्ण सामान को खरीद में 30-50% सम्म छूट दिइने छ। स्मार्टफोन तथा रू 2500 भन्दा माथिको सामान किन्नुहुने ग्राहकहरूले जुसु बोतल म्याचिङ गेम खेली नगद 1000 रुपैयाँ पनि जित्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो टिकटक अकाउन्ट इन्द्रा मोबाइल सेन्टर धादिङलाई फलो गरी आउनुहुने ग्राहकहरूलाई फ्रीमा गेम खेली नगद 500, इयरबड, स्पिकर लगायत थुप्रै सामानहरू जित्न सक्नुहुनेछ। जाने होइन त इन्द्रा मोबाइल सेन्टरको ग्रान्ड ओपनिङमा? ए सुन्नुहोस् त, हाम्रो पसल चाहिँ धादिङ बेसी पुछार बजार काठमाडौँ जाने पुलको ठिक अगाडि रहेको छ।

0: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक कॉमन एक शक्तिशाली चार एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबे अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो
2: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बेलुकीको 8 बज्यो।

6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI powered camera, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

0: श्रीमद् भागवत महापुराण को
1: जय हो,
0: आज को आनंद को
1: जय हो।
0: श्री सोनू हो की दुई घड़ी में जबाओ, दुई घड़ी में मुक्ति जब देखनु हुन्छ तब परीक्षित महाराज ने सोध्नु भो कि सुन्नु भो जब दुई घड़ी में मुक्ति पनि हुन्छ भन्ने, तब भन्नुहुन्छ परीक्षित महाराज कि मान्छेको प्राय जसो को इच्छा के हुन्छ रे कि यो धरती में पनि सुख मिलोस् अनि परलोक में जाने पनि मुक्ति मिलोस्, यस्तो भाव हुन्छ रे। राधे राधे भन्नु हजुर, सबैको इच्छा यही छ होला हैन, हो कि हैन भन्नु त। यहाँ पनि सुख होस्, यहाँबाट गएपछि परलोकमा पनि मुक्ति मिलोस्, सबको इच्छा यही हुन्छ रे। त त्यसको लागि चाहिँ के गरौं त? परीक्षित महाराजले भन्नुहुन्छ, तब सुखदेव स्वामी के भन्नुहुन्छ सुन्नु होला।